0: गेस्ट आरजे
1: नुवादिहा एकेम मेगाहर्ट्ज दिवेई एफएम
2: गेस्ट आरजे बुरास वेद्दु होगे रेगंड अगड फणा रहगा स्टूडियो इन वगुतु
3: नुवादिहा एकेम मेगाहर्ट्ज दिवेई एफएम

0: メロディーメン。
1: Bollywood music ke wahaka dakka laeru music director unge wahaka dakka anula nimma lake no ane hulon ke film to ga music supervisor unga da kura da ora bure Bollywood ke music director ege zimma mafula sabake film ge muli musical identity button kuruma raagu tang heduma music arrangement ta tayyar kuruma limverina lavakiun terina ko masike kurum ge turun film ge wahake ya vyafari ke strategy ya ए म्यूजिक कुलवाय दिनों का विस मैं करने तो औरेंग अदा करेनी म्यूजिक डायरेक्टर कम कवाती। ज़माने बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर उनके इम्मे कामयाबी मिसाल की प्रीतम चक्रबती। एन आगे कामयाबी के असल की अडवा हाजुमों वागुतुंग हितुगा बीमवलों ने के फदा मोलो रागुतंग उफेदुमा ए कैवनी पार्टी ता फलो फिलवाल दे फोरी का दनेशुन ता उगे लवे कम गवियस नो ता हितु के फुंग इहुसास ता बन्नुं कोला लोबी के लवे कम गवियस साउंड अधि म्यूजिक प्रोडक्शन के दायरें एना होदा फवा ता उलीमा तजरिबा के सबुं जमानी स्ट्रीमी मिंगनु तक फिते अधि हम एआय को सागाफी मोलो रागु ता उगे असरु एकुलेवे लवतं उफद्दुमुगे कुलदानकं एना लिबिफवे प्रीतम के कामयाबी बिनाय फवनी डायरेक्टर उन्ना लवकियुं तेरे नायकु एनकुरा मुहिम मसे केत्ता होगे मच्चा वकी रागकं एम्मे एकशे नाडु देनेकतुमकी एनागे एम्मे बोडु एं हुनरु केके यायकु एना उफेदे लवतेकी आमुंगे बोडु लोये पेलिबुनु लवतके आदि अर्जित सिंह नायकु कुरि मसे कतकी जमानी बॉलीवुड लोबीगे लवतोगे मिसराबु मुलिम बदल कोले मसे केतके अयान मुखर्जीगे ये जवानी हे दीवानीगे हिमनाफवा बत्तमीज दिल्लकी प्रीतम के हुनर के मिसाले प्रीतम म्यूजिक हदा अमिताभ बच्चरिया लेंदिए अदि बेनी दयाल अदि शेफाली अलवारिस की आफवा मिलावें जुआंग उमर के मिनिवां हालबोल मिजाज फुरिहा में सिफा को दीफवे प्रीतम मिलाव बिना कुरी जमाने फोरी गदा बीट तका ब्रास अदि होन के अड़तंग एकुले वे कोता मेगे साबो मुले लावया दिरुमा उफावेरी कंगेनेस्टिंग अदि बेनी दयाल गे अडुगे साबुं लावा अडवाहा लैरु एव्वेस मजबूर कमेन्नेति फोरिगदा इहुसा सेकिनस्ते पत्तमीस दिल गे कामयाबी आय को बॉलीवुड गे फोरिगदा डांस लवतकं एम्मे एकशेने एं अडकी बेनी दयाल कं कशवर वेगें दिया अदि एना गे लवकियुं गहुरी मिनिवं कमकी मि लावया दिरुं गेनस्ते मैकंडु सबबु मि बाइनल अकुआमी पॉप क्लब म्यूजिक अदि जेज इंस्ट्रूमेंट तव गे नुफूज होदा एं बॉलीवुड गे असलु गेल्लुवा नुला मुलिंग आउ फेदुमे नेरे देविदाने कंदा क्वेदिंग फुरी हम मिसाले